ष्टेयाता तवाचोता सोवाने हके विनष्टेयाता न एञता सोवाने आ याय आ याय अह ए मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे ननवा ओया मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे ननवा ओया शेक्या।